0: भर मैं गाना है, मैं बढ़िया मैं गाना
1: है, मैं बढ़िया
0: मैं गाना है, मैं गाना है, मैं समझ के मैं गाना
1: है, मैं बढ़िया
0: मैं गाना है, मैं डांस वाला
1: मैं गाना है,
0: मैं गाना है, बापा लाजा

0: आवाजी
1: मैं गाना है वो मैं बोल तो मैं गाना है
0: मैं बोल मैं आवाज
1: मैं गाना है मैं आवाज चा मैं गाना है
0: मैं दुमकी
1: मैं गाना है मैं शर्मा के मैं गाना है
0: मैं मूसा
1: मैं गाना है वो मैं मूसा मैं गाना
0: है मैं बोल दो
1: मैं गाना है सपन दिल मैं गाना
0: है मैं
1: मैं गाना है मैं उमर मैं गाना है
0: मैं मदारा जी
1: मैं गाना है मैं मासा मैं गाना है
0: मैं आवीरू